0: तीन के साथ आ गए, इसलिए हमारे हमारी दस्तियात की वर्ग की घरों के अंदर जाने तश्कर समझ कर उन्हें मुश्किल है, हम तैयारी करके फिर रुकेंगे, लेकिन इलाके के हर आदमी को हम इंतजार करेंगे और जो चीज तक लगाने का इंतजाम और सर्वे को चिंता करेंगे, सारी चीजें जो है सारी चीजें हम आपके अहमदाब को पूरा करेंगे, हर हुक्म को पूरा करने में कामयाबियों और बरकतें इज्जतें मिलती है और जब हुक्म टूटता है तो परेशानियां आती है। नबी जो होते हुए बहुत जो हुक्म टूटा पता शिकस्त बदलगी उनका चीज है, नबी के होते हुए हुक्म टूटेगा तो पता शिकस्त बदल जाएगी, जब हुक्म पूरा करे तो परेशानियां आएंगी, जब हुक्म पूरा करेंगे तो कामयाबियां मिलेंगी। अब उसके लिए ईमानी ताकत की जरूरत, उसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना, तो इसके लिए हमें इसको तैयार करना। नबी और सहाबी दोनों अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नबी और सहाबी अमर इब्ने जुनून साथ बन गए, अमर से पहले आए कायना के रसूल जो मेरे जवान बेटे ये आपके साथ जाते हैं, मुझे कहते तुम घर बैठे रहो, मेरा तो दिन बढ़ता ना, मैं ट्रेनर की कहा के साथ जरूरत में चलू, आप मुझे कहने तो फरमा तुम मजबूर हो, अपने बच्चों को कहा तुम क्यों रखते हो अपनी बात को, बीवी ने इनको मुसलमान किया था, बीवी ने और जोर लगाकर इनको मुसलमान किया, तो बीवी ने यहाँ तक शौक मिलाया था ऐसे कि मेरे जाति का मुझे इजाजत नहीं मिली समान बांधो, तो बीवी ने तो जुमला कहा उसको पक्का करने के लिए, बीवी ने कहा हाँ मुझे पता है रास्ते से वापस आ जाएंगे, रास्ते से वापस आ जाएंगे, लंबा आदमी है तो कब लगे भी वापस आ जाए, अच्छा पहले लेती है अरे वो कुछ आती अल्लाह मुझे घर वापस न लाना, मुझे घर वापस न लाना, मुझे मुझे छोटे को कहीं का ख्याल रखना, वह बात करता मेरे लड़के लड़के शहीद हो गए बहुत गए, मुझे उसके पता समझ में कर गया, मैं देख रहा हूँ हम मुझे जन्नत के दाराखाने में चल रहे हैं, अल्लाह ने उसकी मंगी टांग को सही टांग से बदल दिया, सही टांगों के साथ जन्नत में चलता हुआ मैंने देख लिया, लाइफ वॉच लेकर उनके पुत्रों को उसका रखा तो वहां जाकर मैंने तुम बकरी में पसंद करेगी, चलता नहीं था हर तरफ जाता मदीने की तरफ नहीं जाता, अल्लाह के रसूल से शिकायत की आपने परिवार की घर से निकलते हैं लेकिन तो आपस की मांगनी थी तो आपसे मांगनी थी और मैं मुझे घर वापस न लाना, अगर अब मरने के बाद भी नहीं जाता इसको यही पसंद कर चाहे अपने पसंद कर, ऐसी दुनिया प्यार सकती थी खाएंगे अश्लम उनकी बीवी हजरत मुआजा हजरी बसरा में रहते, एक उनका बेटा था तीनों अमाल में एक नंबर बाप और बेटा तीनों शहीद हो गए इस कतर में, अब महल्ले की ओर से आई कि हम अफसोस करने जाती तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उनको भी सलाह तो नहीं गई थी, उन्होंने उनको कहा कि अगर अफसोस करने के लिए आई हो तो मैं दरवाजा भी खोलूंगी, अपने घर जाकर अफसोस करो, मेरा तो खानून भी कबूल हो गया बेटा भी कबूल हो गया, अगर मैं इबारत बार देने के लिए आई हो तो मैं दरवाजा खोलती हूँ और अगर अफसोस करने के लिए आई हो तो मैं दरवाजा भी खोलूंगी, अपने घर जाकर अफसोस करूँ, मैं क्यों अफसोस करूँ मेरा खानून भी कबूल हो गया बेटा भी कबूल हो गया, तो इसलिए अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के रास्ते से वापस जाने उसकी समझ कर हम अपनी बच्ची को हजूर की बच्ची जैसा बनाएंगे, अपने घर को हजूर के घर जैसा बनाएंगे, अपनी मस्जिद को हजूर की मस्जिद जैसा बनाएंगे, अल्लाह हमें बनाना जहाँ भी लक्ष्मीला अक्सर बनाऊसलम ने बनाया मस्जिद को अमाल से आबाद करेंगे, पांच अमाल मस्जिद में रखाई में करेंगे, मस्जिद की आवाज रोजाना की तालीम घर की तालीम मस्जिद की तालीम घर का मशवरा मस्जिद का मशवरा रोजाना के वक्त तारीख करना मुलाकातें एक एक फर्ज की मुलाकात करके उसको तैयार करना रोजा शरीर बीमा मंजिल मशवरा ये सारी चीजें ये आवाज हर हाल में करें, हर दिन आमदान की अल्लाह की अफजल हो अल्लाह से वो आमाल पत्र होते हैं जो मुसलसल हो हर बारे में इन आमाल को करना है, कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया हर हाल के निकले मैं गुरु के साथ हूँ मैं सितारा 10 साल इसी तरह, हजरत उस्मान 13 साल इसी तरह, हजरत अली के 5 साल इसी तरह, हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के 20 साल इसी तरह, सब बूढ़े हो गए, उनको उठाकर सवारी पर बिठाते तो लोग उनको कहते थे बस करो या बस बूढ़े हो गए, वो कहते थे कि आज मुझे नहीं बैठने देती, उनकी रूखी साफ हो गई उनसे ताजा ऐसे हो जाते थे हर हाल में निकले। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह उसकी तफसीर फरमाते थे कि हर हाल में ये अल्लाह ने सिर्फ निकलने के लिए नहीं फरमाया, ये हर रहमत के बारे में फरमाया है, कुरान की किताब का मतलब यही होता है, यह हर वक्त के साथ निकली उसका मतलब ये हुआ कि मकानी देश हल्के में बदल गए, जमीनी देश हल्के में बदल गए, जमीन का प्रवेशा हल्के में बदल गए, छबे जुम्मन हो गए मुश्किल हल्के में बदल गए, रोजाना घर की कहानी मस्जिद की कहानी हल्के में बदल गए, रोजाने घर का मशूरा मस्जिद का मशूरा हल्के में बदल गए, रोजाने का वक्त पारित करना हल्के में बदल गए, रोजाने राशन को लेकर हल्के तस्वीर से लाभ कर लड़ने की दुआई हल्के में बदल गए, रोजाने की इंतजारी दावत हल्के में बदल गए, इन आमार को जब हम हर हाल में करेंगे तो इन आमार का ही अल्लाह हमें नसीब करवाएंगे, इन आमार में कामयाबी अपनी आंखों से ऐसे नजर आएगी जैसे आज चीजें में नजर आती है। देश हल्के में बदल गए, रोनी देश हल्के में बदल गए, लगने का तरीका हल्के में बदल गए, सभी जुम्मन होकर मशूरा हल्के में बदल गए, हर हाल में इन आमार को करने हैं, इन आमार को हर हाल में करेंगे तो इन आमार में कामयाबी ऐसे हमें नजर आएगी जैसे आज कहते हुए नजर आती। तो मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों वापस जाकर भी ये सारे अमल मस्जिद में भी शुरू कर रहे हैं, दूसरा कदम यह है कि ये सारे अमल अपने घरों में भी शुरू कर रहे हैं, घर की तालीम, घर का मशवरा, घर का घर के अंदर रोजाना आपस में सीखना सिखाना और घर के अंदर जो है वो बच्चों की नई तरबियत और घर के अंदर सारे के साथ रहने वाले अखलाक से पेश आए पीढ़ी से कैसे पेश आए, अभी ये आता कि घर के अंदर बच्चों की तरह रहे, नरम बनकर रहे, जब घर से बाहर जाओ तो शेर बनकर रहे, घर के बाहर शेर और घर के अंदर तो बच्चों की तरह बेहतरीन इंसान है जो अपने दिल से अच्छा सुनिश्चित करे, मैं तो सबसे ज्यादा अपने घर वालों से अच्छा सुनिश्चित करता हूँ, इसलिए अल्लाह जब ने शाह ने हुक्म दिया घर वालों के साथ अच्छा सुलूक करो, घर वाल तो घर के अंदर सब लोगों के साथ रहने वाले अखलाक से पेश आए। हजरत आयशा फरमाती है रात के रोज जो देर से आते थे मशहूरों के पारित होकर तो ऐसी आवाज में घर में दाखिल होकर सलाम करते थे कि घर वाले जहाँ भी लोग सुन ले पता नहीं चले, ऐसा आवाज तो जाकर पूछते थे बर्तन में कुछ है खा लिया नहीं है सो गए सो गए, मशहूर के देखते थे तहज्जुद में चार दिन के हजरत आयशा ने बोले चारों ने फरमाया कि ऐसा ऐसा रात को जब उठते थे तो फिर काम रोजन रोजन ऐसा ऐसा होते थे, ऐसा ऐसा पीछे होते थे कपड़े ठीक करते थे, ऐसा ऐसा जूते लेते थे, ऐसा ऐसा दरवाजा खोलते थे, ऐसा ऐसा भाग जाते थे, जान कुर्बान करने वाली बीवियों है लेकिन उनको कभी निकालने में पानी भर कर अपने अपने काम आप खुद करते थे, अपने काम खुद करने से जाते उसको अगर पानी पिलाए उसको को दूध पिलाए उसको को ये सुन्नत के खिलाफ है, इसलिए सहाबों को नहीं सिखाया था सहाबी का नीचे थोड़ा दिल है सवारी से तो वो सवारी को दिखाते थे नीचे उतरते थे थोड़ा उठाते थे फिर उतर चढ़ते थे, इसलिए नहीं कहते थे मुझे पकड़ाए अपने काम खुद करने की सुन्नत है, आपकी कितनी बीवियों से कपड़े खुद धो लेते काम खुद करते बकरी के कान पकड़कर उसका दूध निकाल कर देते, सराहते थी आदमी थी लोगों में भूल नहीं कर रखते थे, बाहर से आने वालों से पूछना पड़ता था अरे ये मुसलमान तुम लोग मुसलमान कौन है, तो वो दावा करते थे कि ये जो हमने सबसे ज्यादा खूबसूरत है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसलिए घर वालों के साथ नरमी के साथ पेश आना, हर एक पर्दा जिंदा करना शरीर पर्दा शरीर पर्दा औरतें बाहर से पर्दा करती है लेकिन चंद्रदार कुटी जात मामूदार खानादार ये जितने जात जात है ना उन सबसे पर्दा कर हाजिर है, औरत के लिए चंद्रदार पायादार कुटी जात मामूदार खानादार सबसे पैदा जो बनी बहनोई लंबोई जो कानून का छोटा भाई बड़ा भाई उनसे पर्दा है, सही पर्दा करो फिर देखो अगला कितनी ग्रह में कोई बैठक है आप परिवार पर। कहीं भी रिश्तेदार वो औरत को कहते हैं ईमानदार नहीं बैठे तो कहते हमसे पर्दा करोगी हम तुम्हारे घर नहीं आई हम नाराज हो गए। इधर अल्लाह कुरान में क्या वो है कि अगर पर्दा नहीं करोगी मैं नाराज हो जाऊ। देखिए किसको नाराज कर ले, हम लोग ने फरमाया जो लोगों को कुछ करने के लिए अपने आप को नाराज करेगा वो लोग भी जरूर उसके आगे जाकर दुश्मन बनेंगे। जिसने अपने आप को कुछ करने के लिए लोगों को नाराज कर दिया अल्लाह उसके लिए सबकी तरफ से काफी है, हमारे लिए अल्लाह काफी है। बाद लोग कहते हैं कि विचार करें हालात ठीक नहीं है, हमारा तो कोई असर नहीं है और तो कोई नहीं। ऐसे लोग अल्लाह कहते हैं जैसे अल्लाह को यू डर लग रहा है, नहीं अकेले की तने तनहार उसका इलाज को बादशाह है, वो बादशाह है तने तनहार उसका हुक्म चलता है, वो जो चाहे वो होता है। वो कहता है कोई आदमी रसोला अल्लाह काफी ही मदद करने वाला, तुम्हें किसकी जरूरत है, ये करना है उसको कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है तुम आज जमीला अल्लाह काफी है दोस्त बनाने के लिए, वो कहता है तुम आज जमीला अल्लाह काफी है काम बनाने वाला, तुम्हें किसकी जरूरत है, हमें किसी की जरूरत है किसी तरफ से किसी शरीर से किसी चीज की जरूरत है, हम अल्लाह बनाते हैं अल्लाह इंसान मंदिर का फिर बनेगा। अल्लाह काफी ही वो काफी है, अल्लाह काफी है तो तने तनहा बादशाह है वो जो चाहते हैं होता है। माशा अल्लाह कामना भगवान माशा अल्लाह जो अल्लाह चाहते हैं वो होता है और जो अल्लाह नहीं चाहते वो नहीं होता। तो अल्लाह के साथ ये नहीं करो अल्लाह को साथ ले लो। जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वापस आने से इस वक्त मक्के वाले आगे सलाम करने से इनकार कर दिए, मक्के वाले कहते हैं दाखिल नहीं होने देंगे, टाइम वाले पत्थर मार दिए। इस वक्त आपने क्या कहा, आपने जो पढ़ा दी तो आपने कहा अल्लाह आपने मुझे क्या दुश्मनों के हवाले कर दिया, मुझे दो पत्थर छुड़े होते हुए मक्के वाले मेरे दुश्मन टाइम वाले मेरे दुश्मन, फिर आपने कहा अल्लाह अगर आप खुद से राजी है तो मुझे इन इंसानों में से किसी से भी करवाएंगी, और अगर आप नाराज होंगे तो आपके चेहरे पर इस्लाम की कदम जिससे तो बहन सारी अंधेरा रोशन हो जाती है और फिर तो इंसानों के दुनिया और आखिरत के सारे काम समझ जाते हैं। तो अल्लाह आपको राजी करने जरूरी है, जब तक कि आप राजी न हो गए मेरा कल्याण तुम्हारा सत्ता कर जाओ, मेरा कल्याण तुम्हारा सत्ता कर जाओ। अल्लाह आपको राजी करना जरूरी है, जब तक कि आप राजी न हो गए अल्लाह राजी हो गए तो काम करेंगे, अल्लाह को नाराज किया तो काम खराब होंगे। अल्लाह की नाराजगी से बचना ये बताए ये बड़ा बताए ये बच्चों को नहीं देना, खुद भी इसके अंदर औरत को देखा ना महंगे को देखा तो आंखों में जमा कर दिए। अगर वो समझाए तुमने ना महंगे को देखा तो आंखों में जमा कर दिए, कानों कान में उसकी बात सुनी तो कानों में जमा कर दिए, इसलिए उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना, उसके गुनाहों से बचने फिर उनका आदमी मारो फिर रहने पर बरकतें आएंगी कामयाबियां गुजरेंगी बरकतें गुजरेंगी, इसलिए अल्लाह की नाफरमानी से बचना। अभी हम अल्लाह के रास्ते में जो दाल जा रहे हैं तो वो अल्लाह के रास्ते में जाकर इलाज करेंगे, इलाज जैसे डॉक्टर साहब इलाज करते हैं तो दो चीजें जरूरी होती, कल उसको नींद नहीं आती थी अब इलाज किया अब नींद आनी शुरू हो गई, भूख लगनी शुरू हो गई, जिसम हल्का हो गया, इलाज क्या फायदा पड़ा इलाज से, एक तो दवाई खाने से हो रही दवाई खाने से हो रही दवाई नहीं खाएगा तो अस्पताल में जाने का कोई फायदा नहीं। दूसरा परहेज करना जरूरी है, परहेज की जरूरत परहेज नहीं करेगा तो दवाई खाने भी उसको फायदा नहीं देगा। इसी तरह अल्लाह के रास्ते में निकल कर बहुत सी दवाई क्या है उसके लिए आमाल रोजाना रोजाने की तालीम का हल्का और रोजाने का मशवरा और रोजाने की रोहनी कश और रोजाने का बयान रोजाने पांचों नमाजों से पूरी होना के साथ नमाजों का पूरा होना के साथ वो सही आमाल हर नमाज एक से पूरे होना दुनिया और लोग इस दुनिया में हम उसका जा चुके हैं, इसलिए ये आमाल फिर सफर इकट्ठे करना एक आदमी जो तेज बीच में से चला गया था उन्होंने वापसी पर उसको
1: रहे हो, आज निकल कर आए हो और जब तक अपने घर में रहे हो आज में रहे हो। हम इज्तिमाई काम पे जा रहे थे, तुम बगैर इजाजत के कैसे चले? इकट्ठे जाना, जमात इकट्ठी जगह इकट्ठी है, इकट्ठे खाना खाए, इकट्ठे आराम करें, रात को जल्दी सोना, अगर रिश्तों का मौका हो तो जाके सारी रात भी जगने पड़े ठीक है, और अगर रिश्ते पूरी हो गई तो जल्दी सो जाए ताकि सुबह हो। ये जिसम सवारी है, अल्लाह सवारी का ख्याल नहीं रखोगे तो तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, ये काफिलों का तरीका। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका सिखाया, रात जल्दी सो जाओ सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सोना सुबह जल्दी उठो, रात सोएगा तो सुबह जल्दी उठे। रात की छोटी है, नमाज पढ़ते पढ़ते 10 बज जाते हैं, और फिर सुबह को फिर तहज्जुद में, तहज्जुद में भी उठना चाहिए। सारी रात सारी जिंदगी कभी तहज्जुद नहीं छोड़े। दिन की 5 नमाजों की अजाने तो मुअज्जिन देते हैं, इंसान देते हैं, और रात के वक्त की आवाज अल्लाह खुद लगाते हैं। हल मिन मुस्तगफिरिन फअग्फिर लहू, है कोई बख्शिश चाहने वाला? हल मिन मुस्तरजिकिन, है कोई रोजी चाहने वाला? है कोई शिफा चाहने वाला? है कोई मुसीबत में मुब्तला जिसकी मुसीबत दूर कर दे? हल मिन कज़ा फअउतीहि कज़ा, है कोई लेने वाला? है कोई लेने वाला? है कोई लेने वाला? रात के आखिरी हिस्से में आसमानों पर ऐलान हो रहा है, कितना बदकिस्मत है जो सोया रहे, सोया सोने वाले को तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए रात के आखिरी हिस्से में उठना, 3:38 पर, 37:38 पर अजान हो जाती है आजकल यहाँ, उससे पहले 1.5 घंटा पहले उठकर अच्छा वक्त लेकर आदमी उठकर नमाज पढ़े, आधा घंटा दुआ करे, अल्लाह से मांगना। अल्लाह किसी की दुआ को रद्द नहीं करते, अल्लाह से मांगने वाला महरूम नहीं होता। फिर जिक्र करना, अल्लाह का जिक्र करना, फिर कुरान पाक की तिलावत सुबह सुबह करना, इससे जितना नूर मिलता है किसी और काम से इतना नूर नहीं मिलता। तो इसलिए ये 4 काम हम फजर से पहले पक्के कर लिए, 4 काम, घर जाने वाले भी और तश्कील में जाने वाले भी। रात को तहज्जुद का इस्तेमाल जरूरी, रातों को उठना अल्लाह, ये रातें खासतौर पर ये जो 10 रातें हैं, इन 10 रातों की इबादत शबे कदर की इबादत के बराबर है। तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस, इन दस रातों की अल्लाह ने कुरान में कसम खाई है, इतनी अजीम रातें हैं। वल फजरी वलयालिन अश्र, वल फजरी वलयालिन अश्र, 10 रातों की कसम, ये 10 रातों की कसम, ये ज़ुल्हिज्जा की रातें, इन रातों की अल्लाह ने कसम खाई। इन रातों में जागना, रात अल्लाह से मांगना, तहज्जुद का इस्तेमाल करना, एक एक हरफ पर कितनी नेकियां, इन दिनों के अंदर नेक आमाल अल्लाह को जितने पसंद है और कभी नहीं होते, तो रात के आमाल का भी इस्तेमाल करना। और फिर उसके बाद फजर की नमाज के बाद, हमारे जो जमात जारी है अल्लाह के रास्ते में, फजर के बाद बयान होता है, बयान अहम, फजर का बयान भी अहम है, जैसे मगरिब का बयान अहम है, फजर का बयान भी अहम है। फजर के बयान हो या मगरिब का बयान हो, 6 नंबर के अंदर बात करनी, ईमान यकीन की बात, और 3 चीजें, दुनिया से आखिरत की तरफ मुतवज्जे करना, माल से आमाल की तरफ मुतवज्जे करना, मखलूक से खालिक की तरफ मुतवज्जे करना, ये 3 चीजें, और 6 नंबरों के अंदर लाकर सियासत की कोई बात नहीं करनी, हमारे बयान में सियासत की कोई बात ना हो, उम्मत के अयूब नहीं बताने, उम्मत के अयूब नहीं बताने, लोग ये कर रहे हैं, लोग झगड़ा करते हैं, लोग ये करते हैं, लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काल अहलक अन्नास फहुव अहलकुह, जो कहता है लोग खराब हो गए, तो सबसे ज्यादा खराब फरमाया यही है। ये कहने की क्या जरूरत है, ईमान के फजाइल बताना, नमाजों के फजाइल बताना, किसी की खराबी कभी जिक्र न करो, सारी जिंदगी किसी की खराबी नहीं करो, अपना हमसे हमारा पूछा जाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया था, ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सका, नबियों के सरदार को फरमा रही, सारी दुनिया के रसूल हैं,

के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, छह नंबर सीखने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत को सीखने के लिए हम अल्लाह के रास्ते में जाए, नीयत ठीक करें। और इसी तरह बस्ती में दाखिल होने से पहले भी नीयत ठीक करें, वहां जो जो तकाजे हैं उनको हम मशवरे में सोच लें। मशवरे में क्या क्या तकाजे होते हैं, हर बस्ती में जाकर हमने क्या क्या काम करने, वो यही बस्ती से बाहर जो मुजाकरा होगा वो नीयत ताजा करें। सौ फीसद बालिग अपराध से हमने मुलाकात करनी, इस बस्ती के 100% बालिग अपराध, ये बहुत लंबा चौड़ा काम है, हर एक से मुलाकात करनी है, किसी को भी नहीं छोड़ना, हमें सब मुसलमानों की जरूरत है, हर एक से मुलाकात करनी और कोशिश करना एक एक करके मुलाकात करें। जैसे एक घर है, मोहल्ले में एक घर है, उसमें चार जवान भाई रहते हैं, चार जवान भाई, एक जो है एक उनका बाप के साथ रहता है, तो इन सब से अलग अलग, देखो इकट्ठे बैठकर बात करेंगे ना, एक ने ना कर दी सबकी ना हो गई। इसलिए अल्लाह का हुक्म है कि हिकमत के साथ दावत दो, हिकमत अलग अलग लेना, महल्ले वालों से पूछो हमें अलग अलग मुलाकात करनी है सब भाइयों से, वो कहेंगे बताएंगे आपको कि बड़ा भाई जो है वो दुकान पर बैठता है, वहां मिलोगे तो अकेला मिलेगा, उससे छोटे वाला दफ्तर में काम करता है वहां अकेला मिल जाएगा, उससे छोटे वाला वो हॉस्टल में रहता है, उससे छोटे वाला, तो हर एक के पास मुनासिब रहबर लेकर जाना। अल्लाह के रसूल साथ रहबर लेकर जाते, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ताल्लुक बनाने में वो एक नंबर पर थे, रिश्तेदारी निकाल लेते थे, कभी कहते थे तुम्हारा एक शायर गुजरा है ना उसने ये शेर कहे, अब वो सब मुतवज्जे हो जाते, कहते अब अल्लाह के रसूल की बात सुनो, ऐसे करते थे। हजरत उमर को कभी ले जाते, कभी आप हजरत अब्बास को ले जाते, हजरत अब्बास मुसलमान नहीं हुए थे, चचा मुसलमान उस वक्त नहीं हुए थे शुरू में, लेकिन आपसे मोहब्बत बहुत ज्यादा थी, इसलिए आप उनको कहते थे चलो गश्तों में जाना है, क्या ठीक है, तो तुम तारुफ करवाओ दावत दे दूंगा। मक्के वाले मदीना मुनव्वरा वाले जब आपको लेने आए तो उस वक्त बात चर्चा नहीं की थी, उन्होंने ही उनको कहा कि देखो हम तो इनकी हिफाजत कर ही रहे हैं, जैसी कैसी भी कर रहे हैं, तुम इनको ले जा रहे हो, ऐसा ना हो कि वहां जाकर छोड़ दो। मदीने वालों ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल हमें जवाब देने की इजाजत है, मैं जवाब दो बात करो। अब हजरत अब्बास की और उनकी आपस की बात है, उन्होंने हजरत अब्बास ने कहा तुम इनको ले जाओगे पूरा अरब दुश्मन बन जाएगा, ये होगा फिर इनको छोड़ कर नहीं दोगे। उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल पूरा अरब तो दुश्मन बन जाएगा हम, लेकिन इस पर मिलेगा क्या, तो आपने उनको ये नहीं बताया कि कल को किस तरह के खजाने आने वाले हैं, बल्कि यूं फरमाया कि इसका बदला जन्नत में है, आखिरत की तरफ मुतवज्जे की, आखिरत की तरफ। अदी बिन हातिम, हातिम ताई का बेटा, वो सरदार था, भाग गया था, उसको उसकी फूफी पकड़ी गई, बहन उसने जो है वालिद की बहन, उसने अल्लाह के रसूल ने जो उसका इकराम किया उसको सवारी दीदी वापसी के लिए, उसने जाकर अदी को भेजा कि तुम जाओ तो सही, वो बादशाह नहीं है वो नबी है, उनके अखलाक बताए। अब वो आया, जो भाग गया था वो आया, वो कहते मैं मदीना पहुंचा, मैंने जाकर सलाम किया, पहले तो मैंने देखा गली में एक बूढ़ी औरत ने उनको रोक कर उनसे कोई बात तकाजा की, उन्होंने उसकी बात सुनी, इससे मैं इतना समझ गया कि ये बादशाह नहीं है, बादशाह लोग ऐसे बुढ़िया की बातें गलियों में नहीं सुनते। बस फिर अंदर मस्जिद में गए, मैंने सलाम किया, आपने पूछा कौन हो, मैंने कहा हाजी हूँ, हाजी, आपने मेरा हाथ पकड़ा और ले गए अपने हुजरे में, एक ही तकिया था उसके ऊपर मुझे बिठा दिए, मैं इस पर बैठ जाऊ, अल्लाह के रसूल मेहमान को तकिए पर बिठा रहे, खुद नीचे बैठ गए, खुद मिट्टी और वो क्यों ना मुसलमान, आपने फिर उसे समझाया कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, तो मैं भी एक दीन पर हूं, अब मैं तेरा दीन तो मैं तेरे से ज्यादा जानता हूं, तुम रकूसी हो ना, रकूसी ईसाइयों की भी एक किस्म थी, उसने कहा जी हाँ, न तुम अपनी कौम का चौथाई मार खाते हो, उसने कहा आपको तो सारी बातें पता है, तेरे दीन को तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं, फिर तुम यहां क्यों नहीं मुसलमान होते, वो चुप, वहां तो कुछ भी नहीं था, चिटाइयां नहीं थी, कुछ भी नहीं, सब भूखे होंगे, तो आपने आप समझ गए, उसको फरमाया कि हाजी वो दिन दूर नहीं जब किसरा और कैसर के खजाने मेरी इस मस्जिद में पड़े हुए होंगे,
और तू भी उनको लाने वालों में से होगा, तू भी उनको लाने वालों में से होगा। अब वो किसरा को तो जानता था, तो वो घबरा गया, उसने कहा किसरा इब्ने हुरमुस, किसरा इब्ने हुरमुस के खजाने, ये कोई और किसरा आप कह रहे हैं, किसरा इब्ने हुरमुस के खजाने मेरी इस मस्जिद में होंगे और उनको लाने वालों में तू भी होगा। और कोई जकात जकात देने वाला निकलेगा, उसको कोई जकात देने वाला नहीं निकलेगा। एक औरत उसे का हीरा शहर देखा है, देखा नहीं सुना है, हीरा से एक जवान लड़की आएगी देवरात में लगी हुई और उसको यहाँ पर आके हज करके जाएगी, उसको कोई आंख दिखाकर भी नहीं देखे। तो कहते मैंने दिल में सोचा यही न तो आरु बनी तय, वो बनू तय के थे, बनू तय के डाकू किधर जाएंगे, रास्ते दिन हमारा चुपताई अरब का सबसे बड़ा डाकू, बाद में वो साहबी और जर्नल बन गए। तो मैंने सोचा कि वो बनू तय के डाकू, ये जो लड़की देवरात से लदी हुई आएगी अकेली, तो वो मेरे कबीले में डाकू किधर जाएंगे। आपने फरमाया कि हाजी अल्लाह से बड़ा कोई है ऐसे, उसने कहा मुझे कलमा पढ़ा दो, सलमान हो गए। तो उनको तो बताना पड़ता है, लेकिन जब मदीने वालों ने पूछा कि हम सारों से दुश्मनी पूरे अरब से लेंगे तो बदला क्या मिलेगा, आपने कहा इसका बदला तो जन्नत है आखिरत। उन्होंने कहा हम तैयार हैं, हम इसके लिए तैयार हैं, हम इनकी ऐसे हिफाजत करेंगे जैसे अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करते हैं, अपने बीवी बच्चों की जैसे हिफाजत करते हैं। तो ठीक है, तो मेरे मुख्तरम भाई और दोस्तों, इसलिए वहां पर जाकर अपनी नीयतों को ताजा करना, 100% बारे अपराध से मिलना है, नकद जमात चिल्ले तीन चिल्ले की निकालनी अच्छा से, रोजे की जमात ये मकानी काम का हिस्सा है, ठीक है आखिरी दर्जे में सरोजे की जमात भी होती है, लेकिन हजरात फरमाते हैं कि खाली सरोजे की जमात निकाल कर मुस्तमैन न हो जाए, चिल्ले तीन चिल्ले की जमात निकाल, क्यों वजह क्या है मेरे मुहतरम भाई और दोस्तों, आज सारी दुनिया नुकसान में जा रही है, सब माल के पीछे भाग रहे, दुनिया के पीछे भाग रहे, दुनिया को मकसद बनाया, आखिरत का जबरदस्त नुकसान हो रहा है, पता ही नहीं बेचारों को, उनका थोड़ा सा रुख बदलने की जरूरत है, आखिरत को सामने रखकर चले, अल्लाह को सामने रखकर चले, आखिरत को सामने रखकर चले, अमाल को सामने रखकर चले, बीवी को सामने रखकर जिंदगी में गुजारे, बरादरी को सामने रखकर जिंदगी में गुजारे, अल्लाह को सामने रखकर जिंदगी गुजारे, इसके लिए जरूरत है कि उनको लंबे वक्त के लिए निकाले। रोजे के लिए अगर हम निकालेंगे ना, तो रोजे के बाद आकर वही बाजार का माहौल, वही दुनिया का माहौल, वही सारा दिन दुनिया की बातें, कुछ दिन तो ठीक चलेगा, फिर उसके बाद चलेगा समय, चिल्ला दिन चिल्ले, रोजाना मशवरा, रोजाना रातों को उठना, रोजाना की गश्तें, रोजाना की फिक्रें, इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी का रुख बदल गए। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, किसी भी जगह काम शुरू हो या काम जिस जगह पर है उससे आगे तरक्की करे, इसका एक ही रास्ता है कि वहां से नकद जमात निकालो, चिल्ले तीन चिल्ले की नकद जमात हमारा हदफ है, और हमारा काम मस्जिदवार काम है, मस्जिदवार महल्लेवार, जिस बस्ती में तश्कील है, जिस महल्ले में तश्कील है, इस महल्ले और बस्ती से बाहर जाना ही नहीं, और इस बस्ती के किसी साथी को छोड़ना नहीं। एक आदमी के घर जब जाओ कहते खेत में है, जब जाओ खेत कहते बाजार दुकान पर है, तो हम उसको मिलने उसकी दुकान पर जाएंगे, वहां दुकान पर गए, वहां पता चला कि आगे दोस्तों के पास गए, वहां चले जाएंगे, हमें तो हर कदम पर अगर मिल रहा है, उसको जाकर ढूंढ ढूंढ कर इस बस्ती का कोई आदमी छूटे नहीं और बाकी बस्तियों में जाना नहीं। हाँ, 7 साल की वसूली के लिए कभी दाएं बाएं थोड़ा बहुत मकानियों के उनके पुराने साथियों के मशवरे से वो तो हो सकता है, बाकी चिल्ले तीन चिल्ले के लिए रोजे इसके लिए दूसरे महलों में ना चाहिए, उसी जगह कोशिश करें। हाँ, ऐसी जगह देहात में तश्कील हो जहाँ आबादी कम है, तो 1 किलोमीटर के फासले तक जो करीब करीब घर है, देहात है, उनमें भी हम मेहनत करें, और जहाँ हमारी तश्कील हो तो वहां पर हम करीब में कोई ऐसी जगह जहाँ जमात जाने की इजाजत नहीं है, उसको भी हम वहां के मुतवल्ली से मिलते रहे, वहां के साथियों से जाकर मुलाकातें करते रहे, ताकि वहां का रास्ता भी खुल जाए। हालांकि तो इस तरीके से हर मस्जिद के अंदर 100% जो है लोगों बाधित अपराध से हमने मुलाकात करनी है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: सुन रहे हैं रेडियो अमन, अपना मन पसंद रेडियो स्टेशन, तो सुनते रहिए 88.4 करक।
2: देखिए आपको बाखबर, हर खबर से खबर वो जो आपके इल्म में लाना जरूरी है। रेडियो अमन नेटवर्क, जन रंग अम।
3: रेडियो अमन करक आपको दे रहा है एक खुशखबरी। अब आप अपने दिल की आवाज रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फरमाइशों और चाहतों का इजहार मैसेज के जरिए कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां पर टाइप करें RAK, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर अपना नाम लिखें, फिर अपने इलाके का नाम और अपना पैगाम लिखकर हमें 8583 यानी 8583 पर भेजें। आपका मैसेज हमारे प्रोग्राम की रौनक।
4: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-93-32-580।
5: کلا تخنن پرختیخ کل اخکاری
6: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
5: وی اللہ دمرا زر سنگا
6: اسماخ صفات ایٹی کریم

हम और शरारतें हल्की मौसीकी और एक प्यारी सी आवाज जो आपकी दिलों को सुकून दे और लम्हों को खूबसूरत बना दे। रेडियो अमन 88.4 कर आपके

एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जीवन रंग अमन।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: तू
1: ओके मेहरबानी और डेर डेरा ज्यादा शुक्रिया थैंक यू सो वेरी मच जी लिसनर भगो दरनू मी नवालो आंसर याद हो लड़े जी कल्चर तक इस सासु पर बदन की दर्दुने दियो सासु द बदन दर्दुना बिल्कुल नखत मी गिरी यानी बचर ता सासु पर बदन की अड़ुके लगे दले दे उदा अड़ुके दर्द की जी ददी द पारा मंगता सुला द पेंजाइम गिलई दर कु जी औ या चरत सासु पर बदन की पट लगे दले दे उदा पटे मोड़े रे ज्यात खुगी गिरी कद सुट पति दी कदम ला पटी दी जी चरत बदन की पट लगे दले दे उदा दर्द की जी द पेंजाइम गोले इस्तेमाल हुई जी सासु पर गुर्द की या पत्रिखी के काने दी जी जमंग द पेंजाइम गोलो की ऊ देश दवायानो कॉम्बिनेशन मंग जोड़ कर दे जी सासु द गुर्दी पकानी बाने हम कार की जी सासु द त्रिखी पकानी बाने हम कार की चरता बदन की दर्द का अगर दर्द अडू की दवाजी दे जी का अगर दर्द पट्टी दवाजी दे या स्ता दखपी रग बंदे या गुजन मरज द तशवे दे फाले जटेक द तशवे दे जी और दागी सरा स्ता रगुना पट्टी मुकमल तो गबाने डैमेज हुई दे जी तासु द पेंजाइम गोले इस्तेमाल हुई खुमा तासु तवील दे जी जितासु बा लाइपोजाइम द मेदी शरबत द जिनको पास सर हम इस्तेमाल हुई आओ द लाइपोजाइम शरबत बतासु द पेंजाइम गोलो सर हम इस्तेमाल हुई जी तदिन अलावा जमंग द हाई कास्मेटिक द कबने द दुकानदारानो ड्रा द खैर सर इंशाल्लाह आओ द ड्रा की बा इंशाल्लाह मंग द हाई कास्मेटिक द कबने द हाई गोल्ड चारकोल फेस वॉश लॉन्चिंग हम कहू जी जमंग द हाई कास्मेटिक द कबने चारकोल फेस वॉश रवान दे यानी द क्वेली वाला योडेर बेहतरीन योडेर आउटस्टैंडिंग फेस वॉश रवान दे जी जमंग हाई कास्मेटिक्स कंपनी की उस मौजूदा वक्त यो द अनार और द लींबू वाला द स्क्रब वाला बेहतरीन फेस वॉश मौजूद दे जी और हम दंग शांति यो बेहतरीन फेस वॉश बल हम द खैर सर रवान दे जी याद दी विता

के सर मोबाइल जोन मंगल मेला मलिक इलाज मार्केट के जिकम नोई मासर तमाम प्रोडक्ट मिलाई और द्वेम दुकान को वजीर के लिए गिरे सर मोबाइल जोन मंगल मेला अस्सलाम वालेकुम भाई आवाज बिल्कुल ओके उम्मीद रेडियो वाली भाई जमाना धर्म तासो वाले दे था यानी तासो अम्मी ते में जिकम ने स्पेशल सलाम ने जिकम ने का नंबर जोंदो बसे होते था नो ज के मेडंग वर्क रे देखा चिकल सारे टीम के प्रोग्राम को मोडंग वर्क को मनु पूजे मोर में प्रोग्राम नो रिमोड़ो जोंदो बसे ब्याहुती हां मीनांग भाई कैसे हो आपका आवाज करक पे बिल्कुल साफ आ रहा है मैं जीनत हूँ बनू जीनत देर ज्यादा मरना थैंक यू खुशहाल से मरवा वाई सलाम एंड गुड मॉर्निंग वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।

सर सुबह मैसेज हम शामिलों माँ पसी पर 342 311 22 वाहन में सिपर 342 311 22 वाहन में पीर पबीर ताऊ सर जमंगा प्रोग्राम की इस ताऊ सुपर दिया रेडियो माने यानी करक 88.4 आमन रेडियो माने हम ताऊ जमा आवाज और देशी रोजाना पीर पबीर दा टाइम आ बारह से लेकर एक तक लंच टाइम जिकम जमंगा ताऊ सर प्रोग्राम की ताऊ सुधी के माता मैसेज कवले शही कालम कवले शही पसी पर 315 94 72 30 दो सिपर 342 311 22 वाहन में बने हम सिपर 342 311

0: सूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रत जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: द करक अनूर शो खो खलकु द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पा खपल खार करक के द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जोड़न बीमारी गुर्दो की कहानी त्रिख की कहानी बेऔलादी बावसीर मेदी जख्म ब्लड प्रेशर लुगन लगे दिल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जुड़ी बीमारी और द जनानो नारिनो नूर पट औकार बीमारों पशमूल द हर मर्ज इलाज पा तसले सरा दियो तकड़ा काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर सैयद जाकिर शाह बाचा से अपना खवलिश है। सूखची डी चिमिस बी चिमिस आर चिम्पी और नूर सनदुना तरला सकून की द पेखवर मशहूर होम्यो फिजिशियन दे द नूर मालूम द पारा पा दे नंबर राबेता उकड़े 0331-52-65-340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजीत मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरग।

ना चे सलाम यूजी वेलकम वेलकम शो इज वेरी नाइस है मुझे भाई वहाँ द नाइस बीजीएम सुमाया एंड समा फ्रॉम लतंबर सुमाया एंड समा फ्रॉम लतंबर डेर जो तमाना यो नडे मरना बेहदा मरना बेहदा ओ बिल्कुल हर कला इस तरी माशी वेलकम दरते भाई वैसे ये मुस्कान घटक तरीका मुबाई छह बजे शो अच्छा अच्छा बिल्कुल दिलता मौजूद है यो नडे मरना यो जहान मरना

अच्छे बिल्कुल बेचारा अच्छे गुजिस्तान ना खुद बिल्कुल सरमना बोला था देर जो तमाना यो नडे बनना यो जहान बनना अच्छे बिल्कुल हर थिंग प्रोग्राम शो कलरों ने सबों ने तहा मुकावर कवि हो यही कहना सब यही सब यही सब यही कहना

बिल्कुल अरविंद के अरविंद के बिल्कुल कल कल टाइम दासे लिसनर दासे अरविंद के विकना छे मैनेजर सब तो विचार दे प्रोग्राम से गाना चिकिम निकना आगा वर सर वे केना जी बिल्कुल दा दासो करना चिकिम दासे लिसनर विकना चिवर तो विचार दे गाना न वर सर वे बिल्कुल आगा लिसनर आगा अरविंद के तो दा ये केना खेलश की 5 मिनट दे पर तो जमाना छे द माइक त खाली छे ने जे ओ माइक त खाली खबर ओके देबिया तो से माना दा खबर न छे बस खाली दे काटना बस ए गमिनर लरे दे काटना खाली खबर के शेयर के केना بالکل تو سمانا صرف 5 منٹ کا مسلسل خبر ہے بالکل اروندنگ کے گاپ شام روندہ بالکل

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: द करक अनूर शो खो अखल को द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पा खपल खार करक के द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जोड़ून बीमारी गुर्दो की कहानी त्रिख की कहानी बेओलादी बवासीर मेदी जख्म ब्लड प्रेशर लुगन लगे दिल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जुड़ी बीमारी और द जनानो नारिनो नूर पट औकार बीमारो पशमूल द हर मरज इलाज पा तसले सरा दियो तकड़ा काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर सैयद जाकिर शाह बाचा से अपना खवल इशे सोकची डीचमिस बीचमिस आर चिम्पी और नूर सनदुना तरला से कौन की द पेखवर मशहूर होम्यो फिजिशियन दे द नूर मालूम द पारा पा दे नंबर राबित उकड़े 0331-52-65-340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजित मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरग।

उत्थ पिंजा उत्थ द्रे बुंदे यानी 85-83 बुंदे हाँ ख्वांदू मुश्किल आए गाड़े वाड़े गाड़े वाड़े ना ना गाड़े वाड़े ना लका यूं ही मुखा बरा दास भी क्या ना चे सड़ाई पर से गाड़ वाट सी लका सरंगे चे उस लड़की और मक्षे जब पर से गाड़ वाट सा लगी आप सब वो विल में सा खुबियां में ब्रेक वनी वाल मुझे शायद खाना ब्रेक शो मुझे कला ब्रेक शो का ना नमो इसे दाखा बरा ना तो पता बल तरफ तेरी गाड़ी मखर वड़ावा यामे डेरा रनी ना वकड़ल खो खैर लियार में लाऊं शुआ बिहार वारा से दल खबरे व संदरे था नो हो निमश पेरा सो बिल्कुल मजलसी ना भी संदरे हुई गजल हुई ठापे हुई खानदुगाने हुई मुश्किलाई हुई ले बेदी ले बे दावा दे तुसे पगड़ाई से तुसे पगड़ाई से देश पे युवलास मिनटा दे पोसा लास बजी आं गड़ाई नष्ट तर ना जने खालक हुई का ना मकसद जने खालक उस खर्चता दाई ची आसमान तब वक्तल बे वो चागा टेम देता वशी उची की मागा टेम हो गा ना नो यूनिम कास पागे से जमदाई दे उडेर मरा शही थी वो तो से खान दास वो के कना चे खपला खपला गाड़ाई वक सही दे तू से पगाड़ाई से सुमरा टेम दाया दे मु गाड़ाई खुदा से चाली जी बेरता कैसा टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक यू वाला स्पिनर दे पोसा लास्ट बजे पीएम नो जनाब बिल्कुल दे तुसे सारा खबर है आतरे का भी यूनिम सड़ाई भी का ना देश पे वातान नवी नहीं अच्छा वातान नवी नहीं का ना बाहर भी आए काटना ना किसी जी वेले ना किसी जी चे लाडम ना डारी जी अनन सब गर्मी दो ये लाडम ना डारी जी वर सरा दे मांगोरा ना डारी जी चे लाडम में वा ना खुरी मांगोर में वा ना खुरी जका चे का लाडम मांगोरा वो खड़ेगा ना گرمی دور وتلی دی بالکل سرستر کے گرجی جی کلام دائی کمانگور دائی وہ کا شاید خان

जनाब बिल्कुल अरसे यू आउज वर्वी पर प्रोग्राम से यू बीआरसी प्रोग्राम तरफ ता चेर तमासे हाय हाय हाय हाय हाय वरका डांगा।

0: मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि आप कौन है, कहाँ से आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। जब आप बताएं
1: जी जी मेरी आवाज तू कितनी जगह भी सुन चुका है यार।
0: नहीं जितनी देखिए, एक बार अगर आप मुझे बता देंगे ना तो जब फिर कभी जब मैं आपकी आवाज को सुनूंगा तो डायरेक्ट पहचान जाऊंगा कि आप फलाने आप बात कर रहे हैं फलाने जगह से। लेकिन आपकी ना पहली बार मेरे से बात हो रही है, पहली बार अगर आप तारुफ करेंगे ना अपने आप की तो मैं फिर समझ जाऊंगा नेक्स्ट टाइम।
1: ओ भाई शायद खान, मैं तेन बड़ा ही स्याणा समझदा सा।
0: हाँ जी वो तो मैं हूँ।
1: वो अगर तू होंदा ते फिर तू मेनु पहचान भी लेंदा।
0: तो कैसे पहचान लूं पाजी, मेनू दसो किस तरह पहचान लूं। आपने फिर कभी मेरे से बात की है कभी?
1: हाँ मैं तेन
0: नहीं, गलत बात नहीं है जी। मैं बता दूं, मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ जी। और जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे तो बताना, आपको तो बताना पड़ेगा ना कि आप कौन है, कहाँ से कॉल किए। नहीं बताओगे तो फिर कोई बात नहीं है, मैं भी आपको नामालूम में डाल दूंगा।
1: आज मैं बहन बगड़ी की थी, वैसे तो मैं तेरी जबान कितनी जगह कर चुका हूँ।
0: नहीं मेरी जुबान में अगर आप बात करेंगे तो मैं पहचान लूंगा।
1: ओ भाई मैं हमीदा का बोल रहा हूँ, साबराबाद।
0: ओ जी हमीदा का अब देखो ना फिर
1: नेक्स्ट टाइम।
0: जी जी नहीं शुगल खो खबर अदा खुमावे जी कचेरे तौर पंजा पाए रगलायदा आओ का ना जी। हाँ हमीदा का खत ठीक ठाक थे
1: देर अलहमदुल्ला देर अलहमदुल्ला यार प्रोग्राम देर खान दवार भी यार तो बूढ़ी शराक तो बूढ़ी केस पे तो कलम और कहीं था पुरुष व्यापार वो लिखे कला कला तुम्हारा गरम की चीज है
0: जवान दे का मतलब मच्छर दे का बुढ़ा दे का जोन दे का अलग दे का सरंग दे का ना पजड़ी ना बुद्धे मर दे जड़ी ना बुंदे घाटा कुड़ा या चिदलाई देगा ना बस बिल्कुल बेहिशी खुदा खबर ट्रक बतीचे बालिशी बेसा
1: सही थी क्यों ना।
0: जी जी
1: कुदरत
0: सर खत्म की कड़ी दाए मुंह तू चार दो ना
1: चलो
0: जी हमीदा का अनुरोध चाहता सालुमीन अस्तड़ी माशवी
1: यार मुझसे तुम्हारा आवाज उर भी आगो तो सलाम औरतों से चिंता खास तौर सलाम।
0: वालेकुम सलाम डेरा मनना प्रोग्राम से और दगा से प्रोग्राम तक कला कला कल रुका और यू जान मनना गौसी हामिद का वो जो स्पेक्टकुल उमर में दे खुबिया हवे जो प्रोग्राम तब नुस्तिया प्रोग्राम दर सर और डेरा मनना को अस्सलाम वालेकुम जी सो खबर है कहते कुम जिना स्पिन मॉम ना देखा लगाए दे
2: मानो खबर को दहपल रोम ने
0: अखपल रोम ना लगा जब खूब से लगे मानो
2: जी
0: खूब दर्शी का साम
2: ना कुर्बान विशेषता प्रोग्राम तो मुंगे खूब ने को पगलानियो।
0: हाँ खुमावे कहना मावे कहना इंसान दा कलं कल दे इंसान स्तर के सारा पटीशी या मतलब आगा स्तर के दरानीशी क्या ना एवरेज दे खूब कड़ाई दा
2: आओ जी माशाल्लाह शय अहमद तो मैं खूब करें।
0: हाँ सुमरा खूब दे कड़ाई 100 घंटे
2: ये खूब पिछले 12 बजे बंद हो गया ले हम।
0: हाँ
2: दो बंद रहा पास दम।
0: हाँ गर्मी ना हुआ वाले
2: ना माशाल्लाह शेयर कंडीशन में गिदले हूँ।
0: अच्छा दाखो भैया पमाजे से है। हाँ शुक्र दई बस यो कस पर हाथ भी दाशा खबर दो। हाँ प्रोग्राम उर्वे
2: जी
0: प्रोग्राम सर उर्वे का नाम
2: قربان
0: ولې نه تا پروګرام به مونږ یارونه وو وو وو مو ویلا چې دا شمه ویجه دا شډ